0: I've never really worked. I've never done much. My mom just provide me financially and keep giving. So the mindset only changed after I gave birth to my daughter. That's when I felt shameful. I felt very guilty. When you become a mother, like, you just have this in you that, you know, you want to give your daughter a better life. I always say that Penelope is the angel of the house because I know that mom will never come back because she is comfortable living overseas. So the only motivation she had was when I had Penelope. And I also understood something, that my mom took my daughter as me because she has not taken care of me when I'm young. So when she sees Penelope, she sees me.
1: आपके पेरेंट्स इन्फर्म होते हो, बूढ़े होते हैं या बीमार होते हैं, आई थिंक ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए. तो ये पेनफुल प्रोसेस भी है बट लर्निंग प्रोसेस भी है. मेरे काम की वजह, वो खुश है मैं औरतों के लिए काम करूँ या कुछ, शी वॉज नॉट हैप्पी के मैं किसी इशू पे बोलूँ और मैं किसी मसले में गिरफ्तार हो जाऊँ. तो आई डोंट नो, हमारे बीच बहुत फासला आया था. वो ताल्लुक मुझे लग रहा है कि पता नहीं अभी किस तरह कैसे शेप होगा. आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट.

जब लॉ कॉलेज गई भी तो आई वॉज द फर्स्ट हजारा गर्ल. हमारी ब्रोटअप जेंडर ने था खास लड़कियों का भी जो कैरियर है एजुकेशन का. हमारी लॉ में बहुत सारी हजारा लड़कियां आई. मेरे बाद जब मुझे देखा इंस्पिरेशन ली वो वकील बने हैं. उनके ड्रीम में था कि मैं वकील बनूं और उन्होंने मुझे उसमें डाला और मुझे सपोर्ट किया. आई होप कि वो ठीक हो जाए और उनको बताऊंगी कि वो कितना अजीम माँ है और उनके बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं. शी शुड फील जब लोग तालियाँ बजाएं. तो आई विल डू दैट समडे फॉर हर.

0: I've never really worked. I've never done much. My mom just provide me financially and keep giving. So the mindset only changed after I gave birth to my daughter. That's when I felt shameful. I felt very guilty. When you become a mother, like, you just have this in you that, you know, you want to give your daughter a better life. I always say that Penelope is the angel of the house because I know that mom will never come back because she is comfortable living overseas. So the only motivation she had was when I had Penelope. And I also understood something, that my mom took my daughter as me because she has not taken care of me when I'm young. So when she sees Penelope, she sees me.
1: आपके पेरेंट्स इन्फर्म होते हो, बूढ़े होते हैं या बीमार होते हैं, आई थिंक ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए. तो ये पेनफुल प्रोसेस भी है बट लर्निंग प्रोसेस भी है. मैंने काम किया, वो खुश है मैं औरतों के लिए काम करूँ या कुछ. शी वॉज नॉट हैप्पी के मैं किसी इशू पे बोलूँ और मैं किसी मसले में गिरफ्तार हो जाऊँ. तो आई डोंट नो, हमारे बीच बहुत फासला आया था. वो ताल्लुक मुझे लग रहा है कि पता नहीं अभी किस तरह कैसे शेप होगा. आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट.

0: I've never really worked. I've never done much. My mom just provide me financially and keep giving. So the mindset only changed after I gave birth to my daughter. That's when I felt shameful. I felt very guilty. When you become a mother, like, you just have this in you that, you know, you want to give your daughter a better life. I always say that Penelope is the angel of the house because I know that mom will never come back because she is comfortable living overseas. So the only motivation she had was when I had Penelope. And I also understood something, that my mom took my daughter as me because she has not taken care of me when I'm young. So when she sees Penelope, she sees me.
1: आपके पेरेंट्स इन्फर्म होते हो, बूढ़े होते हैं या बीमार होते हैं, आई थिंक ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए. तो ये पेनफुल प्रोसेस भी है बट लर्निंग प्रोसेस भी है. मेरे काम की वजह, वो खुश है मैं औरतों के लिए काम करूँ या कुछ, शी वॉज नॉट हैप्पी के मैं किसी इशू पे बोलूँ और मैं किसी मसले में गिरफ्तार हो जाऊँ. तो आई डोंट नो, हमारे बीच बहुत फासला आया था. वो ताल्लुक मुझे लग रहा है कि पता नहीं अभी किस तरह कैसे शेप होगा. आई एम स्ट्रगलिंग फॉर दैट.

0: đấy thì con đều đổ lỗi cho mẹ. Nó cũng không thích là thể hiện là tình cảm với mẹ trước mặt bạn bè. Mình cũng thấy tủi thân, tại vì sao con lại xa cách mình như thế này. Mình cố gắng là cho con ra nước ngoài, có thể sống trong khi là mẹ đi học thạc sĩ về giáo dục, thì con có thể trải nghiệm sống và học tập ở nước ngoài trong vòng tối thiểu 2 năm.
1: मैं जब लॉ करने लगी तो मेरी अम्मा कहती थी बचपन से आपके अब्बा चाहते थे आप लॉयर बनो. हमारी कम्युनिटी में वकील नहीं है तो तुम बनो, कितनी अच्छी लगोगे, आप बहुत अच्छी बातें करती हो, सवाल करती हो. जब लॉ कॉलेज गई भी तो आई वॉज द फर्स्ट हजारा गर्ल. हमारी ब्रोटअप जेंडर ने था खास लड़कियों का भी जो कैरियर है एजुकेशन का, हमारे लॉ में बहुत सारी हजारा लड़कियां आई. मेरे बाद जब मुझे देखा, इंस्पिरेशन ली, वो वकील बने हैं. उनके ड्रीम में था कि मैं वकील बनूं और उन्होंने मुझे उसमें डाला और मुझे सपोर्ट किया. आई होप कि वो ठीक हो जाए और उनको बताऊंगी कि वो कितना अजीम माँ है और उनके बच्चे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं. शी शुड फील जब लोग तालियाँ बजाएं, तो आई विल डू दैट समडे फॉर हर.